वी थैंक के चक्रवर्ती सर, आरजे रत्नाकर सर, आई एस एन प्रसाद सर एंड सुंदर स्वामीनाथन सर फॉर गिविंग अवे द गिफ्ट्स. वी कंग्रेचुलेट द विनर्स एंड थैंक ऑल द पार्टिसिपेंट्स. साईराम.

0: लॉर्ड लॉर्ड विनायका
1: माय चाइल्ड डिड यू नॉट कॉल मी जस्ट नाउ
0: इट वॉज यू ऑल अलोंग एंड आई डिडंट रियलाइज
1: यस माय चाइल्ड आई हैड टेकन द फॉर्म ऑफ दैट ओल्ड मैन टू टीच यू द एसेंशियल पर्पस ऑफ विनायक चतुर्थी which is to bring unity and love among all fellow beings. No worship can succeed unless the heart is pure and the senses are mastered. True devotion alone is the means to attain this and recognize the divinity. I bless you, my child, that you and your fellow men develop true devotion.

जाए मन्ने जम के साथ ना जाए, ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए। मन्ने मार्ग ठाक ना पाए मन्ने पास्यो प्रगट जाए, मन्ने मग्न चले पंथ मन्ने धर्म सेती संबंध, ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए।